0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। अब आज की बाकी खबरें। जापान की वजारत दिफा का कहना है कि इसके एक तबाहकुन बहरी जहाज ने मुल्क में पहली बार टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के लाइव टेस्ट का तजर्बा किया है। ये संगे मील एक ऐसे वक्त में उबूर हुआ है जब टोक्यो अपनी दिफाई सलाहियतों को तेजी से मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वजारत ने कहा कि ये तजर्बा जापान के वक्त के मुताबिक बुध को बहरुल काहिल में किया गया, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि बहरी सेल्फ डिफेंस फोर्स के तबाहकुन बहरी जहाज जो काई से टोमाहॉक मिसाइल दागा जा सकता है। एजिस से लैस जहाज ने मार्च तक टोमाहॉक लॉन्चिंग की सलाहियत हासिल कर ली थी। इसे सितंबर के आसपास जुनूब मगरबी जापान में सासेबो की बंदरगाह पर वापस जाना है। वजारत का कहना है कि अमरीकी साख्ता टोमाहॉक जापान की जवाबी हमले की सलाहियतों का हिस्सा है। इन मिसाइलों की रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर है। वजारत मार्च 2028 तक ऐसे 400 तक मिसाइल तकरीबन 169.4 बिलियन येन या लगभग 1.04 बिलियन डॉलर में खरीदने का इरादा रखती है। वजारत के साथ दीगर एजिस से लैस बहरी जहाज़ों को भी टोमाहॉक दागने की सलाहियत का हामिल बनाए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा की पट्टी में इस्लामी ग्रुप हमास ने गैर मुसल्ला होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये माहिदा बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया जो गाज़ा में अबूरी इंतज़ामिया की निगरानी के लिए कायम शुदा बैनुल अक्वामी तंजीम है। ट्रंप ने जुमेरात को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज बोर्ड ऑफ पीस ने गाज़ा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए एक तारीखी मुआहदा किया है। बरतानवी पब्लिक ब्रॉडकास्टर BBC ने भी जुमे को खबर दी है कि हमास के एक सीनियर एहलकार की जानिब से बताया गया है कि इस ग्रुप ने गाज़ा में मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने के बोर्ड ऑफ पीस के मंसूबे से इत्तेफाक किया है और ये कि इसका एक बाज़ाब्ता बयान जल्द ही जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। अगर हमास गैर मुसल्लह हो जाए और इसराइली अफवाज इस पट्टी से वापस चली जाएं तो फ़लस्तीनी इलाकों के अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त मतवक्को है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इलाकाई इंतखाबात के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक झड़पें मकामी कानून साज असम्बली के लिए पीर को मुनक़िदा वोटिंग के बाद हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबी असलाहत का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन की एक कस्बे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प हुई। वहां की सूरत हाल की तफसीलात अभी तक नामालूम हैं क्योंकि हुक्काम ने मकामी इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी है, लेकिन रॉयटर्स ने एक एहतजाजी ग्रुप का हवाला देते हुए बताया कि इस बार हलाकतों की तादाद 30 से ज़्यादा है। दरियसना मकामी मीडिया ने सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों का एक रुकन हलाक हो गया। इंतखाबी असलाहत और मकामी सियासतदानों की मराहत के खात्मे का मुतालबा करने वाले इस एहतजाजी ग्रुप को गुज़िश्ता माह गैरकानूनी तंजीम करार दिया गया था। गुज़िश्ता माह भी इस ग्रुप की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प जानलेवा साबित हुई थी। खित्ते के दीगर अजला में अगस्त में पोलिंग के मजीद मराहल होने वाले हैं, जिससे मजीद झड़पों के खदशात बढ़ रहे हैं।
1: आखिर में आप खबरों का खुलासा। कुमामोतो में जलजिले के बाद हलाकतों की तादाद 35 हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जापानी हुकाम ने येन को सहारा देने के लिए ज़रे मुबादला मंडी में मदाखलत की है और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

0: मैं बर्फ से बने शानदार किले को देखकर मभूत रह गई है। वो ताम से कहती है,
1: सुगोई
2: शानदार।
1: ताम, मीते मीते।
2: ताम, देखो देखो।
0: ताम भी फन पारे से मुतासिर है।
2: बहुत बड़ा है। मैंने पहली बार देखा है।
0: कायतो बर्फ के उस फन पारे को देखकर कहता है,
2: किस तरह बनाया होगा?
0: ताम कहती है,
2: बहुत खूबसूरत है। सब साथ मिलकर एक तस्वीर बनाएं।
0: मिया को ये बात पसंद आती है। वो कहती है,
2: अच्छी तजवीज है।
0: मैंने भी सपोरो बर्फ मेले की बहुत तारीफ सुनी है।
2: ये शानदार मेला हर साल फरवरी या उसके करीबी दिनों में मुनक्किद होता है। इसमें कुदरती और मसनूई बर्फ से बनाए गए कई सौ फनपारे होते हैं। बास बड़े शहपारे तो 15 मीटर तक बुलंद होते हैं।
0: बर्फ से इतने बड़े बड़े मुजस्मे और दीगर फनपारे बनाना यकीनन एक मुश्किल काम होगा।
2: फनपारे बनाने वाली टीमें उस मुकाम पर किसी इमारत की तामीर की तरह बांसों या पाइपों से परात बांधती हैं और बर्फ ढेर करने के लिए क्रेन इस्तेमाल करती हैं। पहले मुजस्मे या किसी इमारत वगैरह के फनपारे को उमूमी शक्ल दी जाती है और उसके बाद बारीक तराश खराश की जाती है। फनपारों की तकमील में कई माह का अरसा लगता है।
0: फिर तो सपोरो बर्फ मेला वाकई देखने से ताल्लुक रखता है।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, तस्वीर बनाएं।
1: शशिन ओ तोरिमाशो।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मिलकर कोई काम करने की तजवीज दे सकते हैं।
2: शशिन के मायने है तस्वीर। शशिन ओ तोरिमाशो, तस्वीर बनाएं या तस्वीर खींचें। आज का नुक्ता, आइए मिलकर ऐसा करें, यह कहने के लिए फेल की मस शक्ल के मस को माशो में तब्दील किया जाता है। कलीदी जुमले में शाशिन ओ तोरू यानी तस्वीर खींचना का फेल तोरू, जिसकी मस शक्ल तोरी मस है, माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी तोरी माशो।
0: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
3: तोरी माशो, शाशिन ओ तोरी माशो, शाशिन ओ तोरी माशो।
0: जी सामेइन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: और अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक खातून दोस्तों को मिलकर दुकान में दाखिल होने की तजवीज दे रही है।
4: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
1: ई देसु ने।
2: अब इस मकालमे की तशरीह।
4: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
0: आए इस दुकान में दाखिल हों।
2: कोनो मिसे यानी ये दुकान, इसके बाद का हर्फ जार नी सिमत को जाहिर करता है, चुनांचे इसका मतलब हुआ इस दुकान में। हायरु के मायने है दाखिल होना। फेल हायरु की मस शक्ल है हायरी मस, जो यहाँ माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी हायरी माशो।
1: ई देस ने।
0: अच्छी तजवीज़ है।
2: ये जुमला मुखातिब की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ई तो आपको याद ही होगा यानी अच्छा। जुमले के आखिरी हिस्से का दिस इसे शाइस्ता बनाता है और बिल्कुल आखिर में ने इत्तेफाक को जाहिर करता है।
0: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
3: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
2: अब एक साथ कुछ करने की दीगर तजावीज के साथ मश्क करते हैं। आप सप्पोरो के मशहूर सैयाहती मकाम घंटाघर जाना चाहते हैं। घंटाघर की जापानी है
3: तोकेदाई, तोकेदाई।
2: फेल जाना यानी इकू की मस शक्ल है
3: इकीमस, इकीमस।
2: तो आए घंटाघर चलें को कैसे कहेंगे?
5: तोकेदाई नी इकीमाशो, तोकेदाई नी इकीमाशो।
2: आप चलते चलते थक चुके हैं और कहना चाहते हैं आए कुछ देर आराम करें। कुछ देर को कहते हैं
3: चोत्तो, चोत्तो।
2: फेल आराम करना की जापानी है यासुमु और इसकी मस शक्ल है
3: यास्मीमास, यास्मीमास।
2: तो सामीन कोशिश करें
5: चोत्तो यास्मीमाशो, चोत्तो यास्मीमाशो।
0: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।